0: बुलाना बुलाना।
1: चल सीमा तू ही बुला।
0: अरे हाँ बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनेगा।
1: चल बुला, चल बुला।
2: ना बाबा ना, लो मैंने ही बुला।
1: हाँ तेरी तो जरूर सुनेगा।
2: अरे बुलाना। अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।
3: कॉफी।

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिन्दी गीत संगीतको नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।
1: या पीर बाबा, अब तुम्हारा ही आसरा है, मेरी पोती को अच्छा कर दो। कईयों की मुरादें पूरी की हैं तुमने, हमारी भी झोली भर दो पीर बाबा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी का सीधा प्रसारण है।
1: एक अभागन की विपता दुख भरी सुन रहे हैं आप कल्पना की आवाज में।
0: सुर बिखेरा है शब्बीर अहमद,
1: निर्देशक है बॉस्को लेस्ली मार्टिस, बीबीपीएलएम।

0: टाइम्स एफएम 90.6
1: यो हो सुगम श्रृंखला उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा सुगम श्रृंखला।

0: टाइम्स एफएम 90.6 मा सुन्दै हुनुहुन्छ ऑल टाइम हिट्स हिन्दी फिल्मका गीतहरु।
1: धीरे से आ जा री
2: मम्मा, अतिथि कब आएंगे?

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: हमारी फोर्स का सबसे बेहतरीन ऑफिसर था।
1: हाँ सर, सही कहते हैं। जो कल तक युद्ध जीतने का दावा करता था, वो आज जिंदगी के युद्ध में हार गया है सर,
2: हार गया है।

रेखा, राय साहब भूपेंद्र सिंह से बड़ा बदमाश, खतरनाक और जालिम गुनाहगार शायद ही कोई हो। वो पैसे के लिए देश को बेचता है, अय्याशी के लिए खून करता है। वो तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो।

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक, संगीत लहर।
1: हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया।